दंडौत बंदन अन कुबार सर्व कलां समरथ लोलन तय राखो प्रभु नानक दे कर हाथ फिरत फिरत प्रभु आया परिया तौ शरण आए नानक की प्रभु बेनती अपनी भगती लाए तना शरी शांत महला चौथा कर पहला

0: सुखमणी सुखमृत प्रभ नाम
1: जना के मन विश्राम
0: रहाओ प्रभ के सिमरन गर्भ न बसे
1: प्रभ के सिमरन दुख्यम नसे
0: प्रभ के सिमरन काल पर हरे
1: प्रभ के सिमरन दुश्मन डरे
0: प्रभ सिमरत कछ बिगड़ न लागे
1: प्रभ के सिमरन अनदिन जागे
0: प्रभ के सिमरन भव न व्यापे
1: प्रभ के सिमरन दुख न संताप
0: प्रभ का सिमरन साध के संग
1: प्रभ निधान नानक हर रंग
0: प्रभ के सिमरन

0: राष्ट्रपति जय मात पिता सुत मीत न भाई
1: मनहुआ नाम तेरे संग सार
0: जय मां प्यान दूत जम दले
1: केवल नाम संग तेरे चले
0: जय मुश्किल हो वे अत भारी
1: हर को नाम खिन माए उधारी
0: अनेक पुण्य चरण करत नहीं तरे
1: हर को नाम कोट पाप पर हरे
0: गुरमुख नाम जपो मन मेरे
1: नानक पाव सुख कनेरे
0: सगल सृष्टि को राजा दुखिया
1: हर का नाम जपत हुए सुखिया
0: लाख करोरी बंद न परे
1: हर का नाम जपत निस्तरे
0: अनेक माया रंग तिख न बुझावे
1: हर का नाम जपत आघावे
0: ये मार्ग ए जात अकेला
1: हर नाम संग होत सुहेला
0: ऐसा नाम मन सदा ते आये
1: नानक गुरमुख परम गत पाये
0: छूटत नहीं कोट लख बाही
1: नाम जपत ते पार पर आई
0: अनेक बिगंजे आए संगारे
1: का नाम तत्काल उधारे
0: अनेक जौन जन में मर जाम
1: नाम जपत पावे विश्राम
0: हो मेला मल कबू न तो वे
1: का नाम कोट पाप खोवे
0: ऐसा नाम जपो मन रंग
1: नानक पाई है साध के संग
0: जे मारक के गन जाहे न कोसा
1: का नाम हुआ संतोषा
0: जे पेंडे माँ अंध गुबारा
1: का नाम संग उजियारा
0: जहाँ पांत तेरा को ना से जानू
1: हर का नाम ते नाल पछानू
0: जय माँ प्याम तप्त बहु काम
1: हर के नाम की तुम्हें ऊपर छाओ
0: जहाँ त्रिखा मन तुझ आकर खे
1: नानक हर हर अमृत बरखे
0: भगत जना की बर्तन नाम
1: संत जना के मन विसराम
0: हर का नाम दास की ओट
1: हर के नाम उतरे जन कोट
0: हर जस करत संत दिन रात
1: हर औखद साध कमात
0: हर जन के हर नाम निदान
1: पार ब्रह्म।

0: त्यागवन मध्य फिरिया
1: अनेक प्रकार किए वो जतना
0: कौन दान हो में बरतना
1: शरीर कटाए हो में कर राती
0: वर्त नेम करे वो पाती
1: नहीं तुल राम नाम विचार
0: नानक गुरमुख नाम जपी एक बार
1: नौ खंड पृथ्वी फिरे चिर जीवे
0: महा उदास पी सर जीवे
1: अगन माए हो मत प्राण
0: कनक हसव है भूम दान
1: न्योली कर्म करे वो आसन
0: जैन मार्ग संयम साधन
1: निमक निमक कर शरीर कटावे
0: तो भी हो में मैर न जावे
1: के नाम संसार कछ नाए
0: नानक गुरमुख नाम जपत कत पाए
1: मन कामना तीरथ

0: शुद्ध कहाँ हुए काची पीत
1: हर के नाम की महिमा ऊंच
0: नानक नाम उदरे परत बहुच
1: बहुत सियाणप चमका भव प्यापे
0: अनेक जतन कर तृष्ण त्रापे
1: देखने का गन नहीं बुझे
0: कोट पाप दरगे नहीं सीझे
1: दस नाही ऊपे आल
0: मोह व्यापे माया जाल
1: अवर कर तूत सगली जमडाने
0: गोविंद पंजन में तेरे नहीं माने
1: हर का नाम चपत दुख जाए
0: नानक।

0: साध संग ए हों मैं छोरे
1: को जन्म मरण ते डरे
0: साध जना की सरनी परे
1: जिस जन को प्रभु दरस पे आसा
0: नानक ताके बल बल जासा
1: प्रगल पुरख में पुरख प्रधान
0: साध संग जाका मिटे अभिमान
1: आपस को जो जाने नीचा
0: सो गणिये सब ते ऊंचा
1: जाका मन हुए सगल की रीना
0: हर हर नाम तिन कट कट चीना
1: मन अपने ते बुरा मिटाना
0: देखे सगल श्रेष्ठ साधना
1: दुख दुख जन समृष्ट।

0: जब धर्म में श्रेष्ठ धर्म,
1: हर को नाम जब निर्मल कर्म,
0: सकल क्रिया में उत्तम क्रिया,
1: साध संग धर्म तमल हिरिया,
0: सकल उदम में उदम भला,
1: हर का नाम जपो जी सदा,
0: सकल वाणी में अमृत वाणी,
1: हर को

0: रानी
1: कवन मूर्ते कवन दिशानी
0: तू साज सवार सिंगारिया
1: गर्भगन में जिन्हें उभारिया
0: बार व्यवस्था तुझे प्यारे दूध
1: पर जो वन पोजन सब सूध
0: भयाऊ पर साख सैन
1: मुख प्याओ बैठ को देन
0: निर्गुन गुन कछु न पूछे
1: बक्स ले तो नानक सीझे
0: प्रसाद धरू पर सुख बसे
1: सुत प्रात मीत बनता संग हसे
0: जय प्रसाद पीवे शीतल जला
1: सुखदायी पवन पावक अमूला
0: जय प्रसाद भोगे सब रसा
1: सगल सुमगरी संग साथ बसा
0: तीने हस्त पाव करन नेत्र रसना
1: जिसे त्याग अव संरचना
0: ऐसे दोख मुड़ अंध भी आपे
1: नानक काट लियो प्रभ आपे
0: आद अंत जो राखन हार
1: जिसे अप्रीत न करे गवार
0: जाकी सेवा नव निध पावे
1: तासे मूढ़ा मन नहीं लावे
0: जो ठाकुर सत सदा हजूरे
1: ताको अंधा जान दूरे
0: जाकी टहल पावे दरगे मान
1: जिसे विसारे मुग्ध अजान
0: सदा सदा एव पूलन हार
1: नानक राखन हार अपार
0: संत्या कौडी संग रचे
1: साथ छोड़ चूड़ संग मचे
0: जो छड़ना सो अस्थिर कर माने
1: जो होवन सो दूर पराने
0: छोड़ जाए तिस का श्रम करे
1: संग सहाय तिस पर हरे
0: चंदन लेप उतारे तोए
1: गर्दन

0: जब सुनाए कछ करे छिपाया,
1: बाहर ज्ञान ध्यान स्नान,
0: अंतर व्यापे लोभ सुहान,
1: अंतर अगन बाहर तन स्वा,
0: गल पाथर कैसे तरे अथाह,
1: जाके अंतर बसे प्रभे आप,
0: नानक तेजन सह समात,
1: सुनंधा कैसे मार्ग पावे,
0: कर गए लेह और निभावे,
1: कहां बुझारत बुझे डोरा,
0: इसके ये तो समझे पूरा,
1: कहां

0: चीत
1: जो बहराईता से प्रीत
0: बलुआ के ग्रह भीतर बसे
1: आनंद खेल माया रंग रसे
0: दृढ़ कर माने मन है प्रतीत
1: काल नावे मूढ़े चीत
0: बैर विरोध काम क्रोध मोह
1: झूठ विकार महालोभ त्रोह
0: जुगत बिहाने कई जन्म
1: नानक राख ले अपन।

0: दस वस्तु ले पाछे पावे
1: एक बस कारण भी खोट गुआवे
0: एक भी ना दे दस पीहिर ले
1: तो मुड़ा को कहा करे
0: जिस ठाकुर सो ना ही चारा
1: ताको घीजे सद नमस्कार
0: जाके मन लागा प्रभ मीठा
1: सर्व सुखता हूँ मन बुठा
0: जन अपना हुकुम मनाया
1: सर्व थोक नानक तन पाया
0: अगन साहू अपनी दे रास
1: रात पीत बरते आनंद उलास
0: अपनी अमान कश बहुत साहू ले
1: अज्ञानी मन रोस करे
0: अपनी परतीत आप ही खोवे
1: बहुत उसका विश्वास न होवे
0: की बसत इस आगे राखे
1: प्रभु की आज्ञा माने माथे
0: उससे चौगुन करे निहाल
1: नानक साहेब सदा दयाल
0: अनेक बात माया के हेत
1: सर पर होवल जान अनेत
0: दिन की छाया सो रंग लावे
1: उनसे ओ मन पछतावे
0: जो दिसे सो चालन हार
1: लपटरे होते अंधार
0: उसे जो लावे ने
1: ताको हाथ न आवे के
0: मन हर के नाम की प्रतीत सुखदाई
1: प्रीत सुखदाई
0: मन हर के नाम की प्रीत सुखदाई
1: कर कृपा नानक आप ले लाई
0: मिथ्या तन तन कुटुम समाया।

0: अंध
1: मुख आवता के दुर्गंध
0: बिन सिमरन दिन रैन बिरथा बिहाए
1: मेघ बिना जो खेती जाए
0: गोविंद भजन बिन बिरथे सब काम
1: जो करपन के निरार्थ दाम
0: तन तन ते जिन जन जी कट बच्यो हर नाव
1: तन तन ते जन जेह कट बस्यो हर नाव नानक ताके बल बल जाओ
0: रहत अवर कश अवर कमावत
1: मन प्रीत मुखो गण लावत
0: ज्ञानन हार प्रभु पर भीन
1: बाहर पेख न काहू पीन
0: अवर उपदेश आप न करे
1: आवत जावत जन में मरे
0: जिसके अंतर बस से निरंकार जिसके अंतर बसे निरंकार
1: जिसकी सीख तरे संसार
0: जो तुम पाने तिन प्रभ जाता
1: नानक उन्जन चरण प्राता
0: करो बिनंती पार ब्रह्म सब जाने
1: अपना किया आपे माने
0: आपे आप करत निभेरा
1: किसे दूर जनावत किसे बुझावत नेरा
0: उपाव सियानव सगल पे रहत
1: सब कछ जाने आत्म की रहत
0: जिस पावे तिस ले लड़ लाए
1: सांचन अंतर रहा

0: जप आए जपे सो नाओ
1: आप गवाए सो हर गुण गाओ
0: प्रभु कृपा ते होए परगास
1: प्रभु दे आते कमल बिगास
0: ऊपर सन बसे मन सोए
1: प्रभु दे आते।

0: जो जो कहे सुमुखता होए, सुन मीता नानक बिनवंता, साध जना की अचरज कथा सुपदी।
1: सार के संग उज्जल होत,
0: साध संग में सगली कोत,
1: सार के संग मिटे अभिमान,
0: साध के संग प्रगटे सो ज्ञान,
1: सार के संग विजय परब नीरा,
0: साध संग सब होत नवेरा,
1: साध के संग पाए नाम रतन,
0: साध के संग एक ऊपर जतन,
1: साध की महिमा भावने कौन प्राणी,
0: नानक साध की शोभा परम माहेश्वानी,
1: साध के संग अगोचर मिले,
0: साध के संग सदा पर फूले,
1: साध के संग आवे बस पंचा,
0: साध संग अमृत रस पूंजा,
1: साध संग हुए सब की रेन,
0: साध के संग मनोहर बहन,
1: साध के संग में कतुंतावे,
0: साध संग स्थित मन पावे,
1: साध के संग माया ते पिन,
0: साध संग नानक प्रभ सो प्रसन्न,
1: साध संग दुश्मन समीत,
0: साधु के संग महापनीत,
1: साध संग की सेवनी बैर,
0: साध के संग न बीगा पैर,
1: साध के संग ना ही को मंदा,
0: साध संग जाने परमानंदा,
1: साध के संग ना ही हो ताप,
0: साध के संग ते जी सब
1: आपे जाने साध बढ़ाई,
0: नानक साध प्रभु बन आई,
1: साध के संग न कब हुतावे,
0: साध के संग सदा सुख पावे,
1: साध संग बस्त अगोचर लह,
0: साधु के संग अजर सहे,
1: साध के संग सैतान उच्च,
0: साधु के संग महल पहुँचे,
1: साध के संग दृढ़ सब धर्म,
0: साध के संग केवल पार ब्रह्म,
1: साध के संग पर नाम निधान,
0: नानक साधु के कुर्बान।

0: खट्टी,
1: तैसा अमृत तैसी भेख खट्टी,
0: तैसा मान तैसा अभिमान,
1: तैसा रंग तैसा राजान,
0: जो वरताए साई जुगत,
1: नानक पुरख ये जीवन मुक्त,
0: पार ब्रह्म के सगले ठाओ,
1: ये जिसका रखे तैसा तन नाओ,
0: आपे करण करावण जोग,
1: प्रपा वेसो ही फन होग,
0: पसरे आप होए अनंत रंग,
1: लखन जय पार ब्रह्म के रंग,
0: जैसी मत दे तैसा प्रगास,
1: पार ब्रह्म का

0: कई कोट किरपन कठोर,
1: कई कोट अभी गातम निकोर,
0: कई कोट पर दर को हिर है,
1: कई कोट पर दुख ना कर है,
0: कई कोट माया शर्मा है,
1: कई कोट पर देश ब्रह्मा है,
0: जितित लावो तितित लगना,
1: नानक करते की जाने करता रचना,
0: कई कोट सिद्ध जती जोगी,
1: कई कोट राजे रस भोगी,
0: कई कोट पंखी सर्व उपाय,
1: कई कोट पात्र बेख लग जाए,
0: कई कोट पवन पानी बसंतर,
1: कई कोट देश भूमंडल,
0: कई कोट ससी और सूर नक्षत्र,
1: कई कोट देवदान इंद्र सिर छत्र,
0: सगल समग्री अपने सूत धार,
1: नानक जिस जिस पावे जिस जिस ने सारे,
0: कई कोट राजस तामस साकत, कई कोट किए रत्न समुंद,
1: कई कोट नाना प्रकार जंत,
0: कई कोट किए चिर जीवे,
1: कई कोट गिर में सुब्रन थीवे,
0: कई कोट जखे किनर पिसाच,
1: कई कोट पूत प्रे सुकर मिर्गाच,
0: सबते नेरे सबुते दूर,
1: नानक आप अल्पत रेहा परपूर,
0: कई कोट पाताल के वासी,
1: कई कोट नरक स्वर्ग निवासी,
0: कई कोट जन्मे जीव है मर है,
1: कई कोट बहुत जोनी फिरे,
0: कई कोट बैठत ही खाहे,
1: कई कोट काले थक पाहे,
0: कई कोट किए तनवंत,
1: कई कोट माया में चिंत,
0: जय जय पाणा तें तें राख है,
1: नानक सब किस प्रभु के हाथे,
0: कई कोट भये बैरागी,
1: राम नाम संत निर्लागी,
0: कई कोट प्रभु को खो जनते,
1: आत्म में पार ब्रह्म लहंते,
0: कई कोट दर्शन प्रभु प्यास,
1: जिनको मिले प्रभ अविनाश,
0: कई कोट मांगे सत्संग,
1: पार ब्रह्म तें लागा रंग,
0: जिनको होए आप सुख प्रसन्न,
1: नानक तेजन सदा तन तन,
0: कई कोट खानी अर खंड,
1: कई कोट आकाश ब्रह्मांड,
0: कई कोट होए अवतार।

0: कई जगत की ना विस्तार
1: कई बार पसरियो पासार
0: सदा सदा एक एक अंकार
1: कई कोट की ने बहुपात
0: प्रभते हो प्रमाए समात
1: ताका अंत न जाने कोए
0: आपे आप नानक प्रभ सोए
1: कई कोट पार ब्रह्म के दास
0: तिन हो वता तम पर गास
1: कई कोट तत के बेते
0: सदा निहारे को नेत्रे
1: कई कोट नाम रस पीवे
0: अमर भय सा।

0: ताप थापन हारा
1: अंतन ही किच पारा वारा
0: हुक्मे तार दर रहावे
1: हुक्मे उपजे हुक्म समावे
0: हुक्मे उच नीच व्योहार
1: हुक्मे अनग रंग पर कार।

0: बीच कीट को राज
1: बार ब्रह्म गरीब निवाज
0: जाका दृष्ट छूना आवे
1: का जिस पर टावे
0: जाको अपनी करे बख्शीस
1: का लेखा न करने जगदी।

0: तन करे आत्म नहीं द्रवे,
1: अंतर्गे को कैसे गवे,
0: आपस को जो फला कहावे,
1: इसे भलाई नेक नावे,
0: सर्व की रींचा का मन हुए,
1: और नानकता की निर्मल सोए,
0: जब लग जाने मुझते कुछ हुए,
1: तब इसको सुख नाही कोए,
0: जब ही जाने में किच करता,
1: तब लग गर्व जो

0: कदी
1: मन की टेक बिरती सब जान
0: देवन को एक है भगवान
1: दिए रहे अकाए
0: और नदिश न लागे आए
1: और रखे एक आप
0: मानो के किच नाही हाथ
1: हुकम बूझ सुख होए
0: इसका नाम रखंठ ब्रोए
1: सिमर सिमर सिमर प्रभ सोए उस्तुत मन में कांदरंकार
0: कर मन मेरे सत व्यवहार
1: रसना अमृत पियो
0: सदा सुहेला कर ले जियो
1: नैनो पेक ठाकुर का रंग
0: साथ संग बिन से सब संग
1: चलो मार्ग गोविंद
0: मिटे पाप जपिए हर बिंद
1: हर कर्म श्रवण हर कथा
0: हर दरगे नानक उज्जल मथा
1: मठ भागी ते जन जग माहे
0: सदा सदा हर के गुण गाए
1: राम नाम जो करे विचार
0: जिसन वंत के नहीं संसार
1: मंत्र मुख बोले हर मुखी
0: सदा सदा जानो ते सुखी
1: एको एक एक पछाने
0: एतत कियो सोजी जाने
1: राम संग जिसका मन मानिया
0: नानक तिने निरंजन जानिया
1: गुर प्रसाद आपन आप सूझे
0: तिसकी जानो तृष्णा बुझे
1: सास संग हर हर जस कहत
0: सर्व रोग त्यो हर जन रहत
1: बंदन कीर्तन केवल बठियान
0: ग्रस्त मैं सोई निर्वाण
1: एक ऊपर जस जन की आसा
0: तिसकी घटिए जम की फासा
1: और ब्रह्म की जस मन भूख
0: नानक तिसे न लागे दुख
1: हर प्रभ मन चित आवे।

0: गहर गंभीर गई सुजाना
1: पार ब्रह्म परमेश्वर गोविंद
0: कृपा निधान दयाल बख्शंद
1: नाथ तेरे कीचर नहीं पाओ
0: नानक के मने वन राओ
1: मनसा पूरन सरना जोग
0: जो कर पाया सोई हो
1: अर्ण परंजा का नेत्र फोर
0: जिसका मंत्र न जाने हो
1: आनंद रूप मंगल सज जाके
0: करम थोक सुनिए करता के
1: राज में राज जोग में जोगी
0: तप में तप ईश्वर ग्रस्त में पोगी
1: चाहे चाहे भक्त सुख पाया
0: नानक तिस पुरख का गिने अंत न पाया
1: जाकी लीला की मितना है
0: सगल देव हारे अब गाये
1: पिता का जन्म के जाने पूत
0: सगल बरोही अपने सूत
1: सुमत ज्ञान ध्यान दिंदे
0: जनदास नाम ते आवे से
1: गुण में जाको परमाए
0: जन्म मरे फिरे आवे जाए
1: पूछ नीच इसके स्थान
0: जैसा जनावे तैसा नानक जान
1: नाना रूप नाना जाके रंग
0: नाना पेक करे एक रंग
1: नाना विद की नो विसार
0: रवे अविनाशी एक अंकार
1: नाना चर्च करे खिनमाए
0: पूरे ओ पूरन सब ठाए
1: नाना विद कर वंत बनाई
0: अपनी कीमत आपे पाई
1: सब करते इसके सब इसके ठाओ
0: जब जब जीवे नानक हर नाम
1: नाम के तारे सगले जानते
0: नाम के तारे खंड ब्रह्मंड
1: नाम के तारे सुनन ज्ञान ध्यान
0: नाम के तारे सुन
1: नाम के तारे सिमरत वेद पुराण
0: नाम के तारे सुनन ज्ञान ध्यान
1: नाम के तारे आकाश पाताल
0: नाम के तारे सगल आकार
1: नाम के तारे पुरिया सब पवन
0: नाम के संगुदरे सुन श्रवण
1: कर कृपा जिसे अपने नाम लाए
0: नानक चौथे पद में सो जनगत पाए
1: रूप सत जगा सत स्थान
0: पुरख सत केवल प्रदान
1: करतूत सत सत जा की वाणी
0: सत पुरख सब माए समाणी
1: सत कर्म जा की रचना सत
0: मूल सत सत उत्पत्त
1: करनी निर्मल निर्मली
0: जिसे बुझाए तिसे सब बली
1: सत नाम प्रभु का सुखदाई
0: विश्वास सत नानक गुरते पाई
1: सत वचन साधु उपदेश
0: सत्य जन जाके हृदय प्रवेश
1: सत नृत्य बुझे जे कोए
0: नाम जपत्ता की गत होए
1: आप सत किया सब सत
0: आपे जाने अपनी मित गत
1: जिसकी सृष्टि सो करने हार
0: अवर न बूझ करत विचार
1: करते की मित न जाने किया
0: नानक ज्योतिष पावे सो वर्दी
1: विस्मन विषम पे विस्माद
0: जाते से आया स्वाद
1: प्रभु के रंग राच जन रहे
0: गुर के बचन पदार्थ लहे
1: ओए दाते दुख काटन हार
0: जाके संग तरे संसार
1: जन का सेवक सोवड़।

0: बली चरण सत सत पर सनहार
1: पूजा सत सत सेवदार
0: दर्शन सत सत पेखनहार
1: नाम सत सत त्यावनहार
0: आप सत सत सब तारी
1: आपे गुण आपे गुणकारी
0: शब्द सत सत प्रभ वक्ता
1: सुरत सत सत जस सुनता
0: पूजन हार को सत सब होए
1: नानक सत सत प्रभ सोए
0: सत स्वरूप हृदय जन मान्या
1: करन करावन तन मोल पछान्या
0: जाके हृदय विश्वास प्रभ आया
1: सत ज्ञान तिस मन प्रगटाया
0: पैते निर्भो होए बसाना
1: जैसे उपजै तिस माए समाना
0: बस्त माए लै बस्त कढाई
1: ताको भिन्न न कहना जाई
0: पूछे भूषण हार विवेक
1: नारायण मिले नानक एक
0: ठाकुर का सेवक आज्ञाकारी
1: ठाकुर का सेवक सदा पुजारी
0: ठाकुर के सेवक के मन प्रतीत
1: ठाकुर के सेवक की निर्मल रीत
0: ठाकुर को सेवक जाने संग
1: प्रभु का सेवक नाम के रंग
0: सेवक को प्रभु पालन हारा
1: सेवक की राखे निरंकारा
0: सो सेवक जिस दया प्रभ तारे
1: नानक सो सेवक सास मारे
0: अपने जन का पर्दा टाके
1: अपने सेवक की सर पर रखे
0: अपने दास को दे वडाई
1: अपने सेवक को

0: नानक सो सेवक दे दिस प्रताया,
1: की कीरी मैं कल राखे,
0: पसम करेलस कर कोट लाखे,
1: जिसका सास न काटते आप,
0: ताको राखत दे कर हाथ,
1: मानस जतन करत बहु भात,
0: जिसके कर्तव्य बिरथे जाते,
1: मारे न राखे अवर न कोए,
0: सर्व जिया का राखा सोए,
1: काहे सोच करे रे प्राणी,
0: जप नानक प्रभ अलख बढ़ानी,
1: बारम बार बार प्रभ जपिए,
0: पी अमृते मन तंत्र पिए,
1: नाम रतंजन गुरमुख पाया,
0: जिसके चवर ना इंद्राया,
1: नाम तन नामो रूप रंग,
0: नामो सुखर नाम का संग,
1: नाम रस जो जन तृप्ताने,
0: अंतर नाम है नाम सुमाने,
1: उठत बैठत सोवत नाम,
0: और नानक जन के सदकाम,
1: बोलो जस जेबा दिन रात,
0: रब अपने जल की नींदात,
1: करे भगत आत्म कह जाए,
0: रब अपने से रहे समाये,
1: जो हो आहो वत सो जाने,
0: रब अपने का हुक्म पहचाने,
1: जिसकी महिमा कौन बखानो,
0: जिसका गुण का एक न जानो,
1: आठ पहर प्रभ बसे हजूरे,
0: कौ नानक से ही जन पूरे,
1: मन मेरे दिन की ओट ले,
0: मन तने अपना तिन जन दे,
1: जिन जने अपना प्रभु पछाता,
0: सो जन सर्व थोक का दाता,
1: जिसकी शरण सरब

0: हर का नाम ले,
1: हर चुप दे सेवक को दे,
0: मोह माया के संग न लेप,
1: मन में रखे हर हर एक,
0: अंधकार दीपक पर गासे,
1: नानक परमो दुख तैसे न से,
0: सप्त माई ठाड वरताई,
1: आनंद प्यार दुख नाठे पाई।

0: निर्गुण आप सरगुण भी ओही,
1: लगातार दिन सगली मोही,
0: अपने चरित प्रभ आप बनाए,
1: अपनी कीमत आप पे पाए,
0: हर बिन दूजा नाही कोए,
1: सर्व निरंतर एको सोए,
0: ओत पोत रव्या रूप।

0: सो सुख साधु संग प्रीत
1: सोभा को करे पली करनी
0: सासो बापद हर की सरनी
1: अनि कुपावी रोग न जाए
0: रोग मिटे हर अब खदलाए
1: सर्व निदान में हर नाम निदान
0: जप नानक दर गए परवान
1: मन प्रबोधो हर के नाए ताको बिगन न लागे कोए
0: जाके हृदय से हर सोए
1: कलताती ठांडा गुर हर नाओ
0: सिमर सिमर सदा सुख पाओ
1: बिन से पूरन होए आस
0: भगत पाए आत्म परगास
1: तित कर जाए बसे अविनाशी
0: कहना न काटी जम फांसी
1: संत विचार करे जन साचा

0: चरण कमल राखो मन माहे
1: जन्म जन्म के किल बिख जाए
0: आप जपो अवर नाम जपावो
1: सुनत कहत रहत पावो
0: तान पूत सत हर को नाओ
1: सह सुभाय नानक गुण गाओ
0: गुण गावते उतरस मैल
1: बिन्स जाए हमें बिख फैल
0: होए अचिंत बसे सुख ना
1: होए।

0: जी, संच करो व्यवहार।
1: यहाँ सुख दर्गे जयकार,
0: सर्व निरंतर एको देख।
1: कह नानक जाके मस्तक लेख,
0: एको जप एको साला है।
1: एक सिमरे को मन आहे,
0: एकच के गुण गाओ अनंत।

0: वड़पागी जपया प्रभ सोए
1: नानक नाम रते सुख होए
0: सेवक की मनसा पूरी पई
1: सतगुर ते निर्मल मत लई
0: जन को प्रभ हो दया।

0: आत्मा कहीं ना जाए
1: नानक रहया सर्व समाए
0: प्रभु भक्त संत दीन दयाल
1: भक्त चल सदा कृपाल
0: अनाथ नाथ गोविंद गोपाल
1: सर्व घटा करत प्रतपाल
0: आदि पुरुष कारण करतार
1: अगर जना के प्राण आधार
0: जो जो जपे सो होए पुनीत
1: भगत पाए लावे मन हित
0: निर्गुणिया नीच अजान
1: नानक तुमरी शरण पर भगवान
0: सर्व वैकुंठ मुकत मुकत मुख पाए
1: एक निमक हर के गुण गाए
0: अनिक राज भोग बढ़ियाई
1: हर के नाम की कत...

0: जब का एक स्नान
1: पाप हम सब कहते होता तब भैरव के संग मात
0: जब इसका बन के
1: तब सोको के से व्यापत
0: अपन आप पार ब्रह्म
1: तब मोक हाँ के सोवत परम
0: अपन के लाप वर्तिजा
1: नानक करते एक हार न दूजा
0: जब होवत प्रभ केवल तनी
1: तब बन मुझको किसको गनी
0: जब एक के हर अगम अपार
1: तब नरक सुरको कौन अवतार
0: जब निर्गुण प्रभ सहज सुभाए
1: तब सेव सकत कहो के सुठाए
0: जब आपके आप अपनी ज्योत रहे
1: तब कवन डर कवन कर डरे
0: अपन चले तब करने हार
1: नानक ठाकुर अगम अपार
0: अविनाशी सुख अपनासन
1: कह जन्म मरण को कहाँ विनाशन
0: जब पूर्ण करता प्रभ सोए
1: तब जमकी त्रास कहो कि सोए
0: जब अभिगत अगोचर प्रभ एक
1: तब चित्र गुप्त के पूछे लेखा
0: जब नाथ निरंजन अगोचर अगादे
1: तब कौन छुटे कौन बंधन बांधे
0: अपन आप पापी अचर जा
1: नानक अपन रूपी आप ही प्रजा
0: जब निर्मल पुरख पुरख पथ होता
1: तह बिन मैल कहो क्या तोता
0: जब निरंजन निरंकार निर्वाण
1: तह कौन को मान कौन अभिमान
0: जय स्वरूप केवल जगदीश
1: तह चल छिदर लगत को कीस
0: जय ज्योत स्वरूप ज्योत संग समार
1: तह किसे भूख कवन तृप्तावे
0: करन करावन करने हार
1: नानक करते का नहीं सुमार
0: जब अपनी शोभा अपन संग बनाई
1: तब कवन माए बाप मित्र सुत पाई
0: जय सर्प कला आपे पर बीन
1: वेद के देव कहाँ को चीन
0: जब अपन आप उतार
1: सगन सगन कहाँ बिचारे
0: जब अपन ऊच अपन आप नेरा
1: कौन ठाकर कौन कही है तेरा
0: विषम विष्णु रह विस्माद
1: नानक अपनी गत जानो आप
0: जय शैल शेद पेद माया
1: वहाँ किसे व्यापत माया
0: आप को आपे आदेश
1: जय गुण का ना ही प्रवेश
0: जय एक के एक एक भगवंता
1: जय कौन चंद के लागे चिंता
0: जय आपन आप पाप तियारा
1: जय कौन कथे कौन सुनने हारा
0: बहुत ब्यांत ऊंचते ऊंचा
1: नानक आपस को आपे पहुँचा
0: जय आप ऋषि पर पंच अकार
1: गुण मैं की नौ विस्तार
0: आप सुनते पई कहावत
1: ओ नरको स्वर्ग बिछावत
0: और जाल माया जंजाल
1: ओ मैं मोह परम पै पार
0: सुख मान अपमान
1: अनेक प्रकार की ओ बख्यान
0: अपन के लाभ कर देखे
1: खेल संकोचे तो नानक एक है
0: जय अभिगत भगत है आप
1: जय पसरे पसार संत प्रताप
0: गुरु पाका आपे तनी
1: उनकी शोभा उन्हों बनी
0: आपे को तो करे आनंद जोज आप

0: सगल समिग्री कस्कट माहे
1: अनेक रंग ना नाम दिसराहे
0: नौ निज अमृत प्रभ का नाम
1: देही मैं इसका विश्राम
0: सुन समाधन हते नाद
1: कह न जाइए त्रिज विस्माद
0: तीन देखिया जिस आप दिखाए
1: ज्ञान जन सो दी पाए
0: सो अंतर सो बाहर अनंत
1: कड़कड़ व्याप रहा भगवंत
0: तरन माही आकाश प्याल
1: कर्म लोक पूर्ण प्रतिपाल
0: बंतिन पर्वत है पार ब्रह्म
1: जैसी आज्ञा तैसा कर्म
0: पौन पानी बे संतर माही
1: यार कुंड तय जिसे समाहे
0: इससे पिन नहीं को ठाओ
1: और प्रसाद नानक सुख पाओ
0: वेद पुराण सिमरत में देख
1: सुर नक्षत्र में एक
0: वाणी प्रभु की सबको बोले
1: आप अडोल न कब ढोले
0: सर्व कला कर खेले खेल
1: मोर न पाइये गुण है अमोल
0: सर्व ज्योत में जाकी जो

0: सगल समग्री जाका तना
1: आपन जस आप ही सुना
0: आवन जानिक खेल बनाया
1: आज्ञाकारी की नी माया
0: सबके मदली पतो रहे
1: योगिश कहना सो आपे कहे
0: आज्ञा भी आज्ञा जाए
1: नानक जा पावे ता रहे समाए
0: इससे हुई सुनाही बुरा
1: औरे कहो किने किच करा
0: आप ला कर तू ततनी की
1: आपे जाने अपने

0: नानक जी का ये आधार
1: उत्तम श्लोक साध के बचन
0: अमलीक लाल ए रतन
1: सुनत कमावत होत उधार
0: आप तेरे लोके निसार
1: सफल जीवन सफलता का संग
0: जाके मन लागा हर रंग
1: जय जय शब्द नाहद वाजे
0: सुन सुन अनद करी प्रभु गाजे।

0: त्रास दे मुझे उभरी है,
1: मरण काल का त्रास निभरी है।
0: ओ जो सदा हमारे पच्छा
1: तेरे सूचो करे और अच्छा,
0: राख ले हो मोए राखण हारे,
1: साहिब संत सहाय प्यारे,
0: दीन बंद दोस्तन के हंता,
1: तुम हो पूरी चतुर्दश कंता,
0: काल पाए ब्रह्मा बप तरा,
1: काल पाए शिव जी अवतरा,
0: काल पाए कर विष्णु प्रकाश।

0: नमस्कार तिसी को हमारी
1: सगल प्रजाजन आप सवारी
0: सेवकन को सब सेवकन को सब गुण सुख दियो
1: सतरन को पल मोहबत कियो
0: कटकट के अंतर की जानत
1: भले बुरे की पीर पहचानत
0: चिंटी ते कुंचर्य स्थूला
1: सब पर कृपा दृष्ट कर फूला
0: संतन दुख पाए ते दुखी
1: सुख पाए साधन के सुखी
0: एक एक की पीर पहचाने
1: कटकट के पट पट की जाने जब

करकर रखा है तेरे तारे, सही तुद नावन जो तू भावन रते तेरे भगत साल लई होर किते तुद नावन सही मैं चित नयावन नानक क्या विचारे।

आई कर कर देखा किता अपना दुख दिल बड़े आई दुख भावे जोई कर से फिर हुक्म न करना दाई सुपात साहब सहपत साहिब नानक रहण राजा ऐसा मोहल्ला पहला सुन बड़ा आख सब कोई कि बड़ बड़ा डिठा होय कीमत बाई न कह जाय कहने वाले तेरी रह समाई।

अंतर तेरे अनेक तेरे अनेक पढ़े बहु सिमरत सासरी कर क्रिया खट कर्म करंतर सह भक्त पले जन नानक जी जो पावे मेरे हर भगवंत तू आदि पुरख अपरंपर करता जी तद जे उड़े अवर्ण कोई तू जुग जुग एको सदा सदा तू एको जी तू निचल करता सोई तुने आपे भावे सोई वरत जी तू आपे करे सो होई तुझे आपे सृष्ट सब उपाई जी तुझे आपे सिर सब गोई जन नान गुण गावे करते के जी जो सबसे का जानोई आसा महला चौथा तू करता सजियार मैं डासाई जो तू भावे सोई थीसी जो तू दे सोई हो पाई रहा सब तेरी तू सबनी त्याया जिसनो कृपा करें तिन नाम रतन पाया गुरमुख लादा मन मुख गवाया तुझिया बिछूड़िया मिलाया तू दरिया सब तुझ ही माहे तुझ बंदूजा कोई नाही

या पंक जमाओ पग नहीं चाल हम देखा तन डूबी मन एक न जैद समूर मना हर बिसरत तेरे गुण गले आ रहा ना हो जति सती नहीं पढ़िया मूर्ख मुकदा जन्म है प्रणमत नानक तिन की शरणा जैन तू नाही भी सरे आया सा महला पंजवा कई परापत मानुक दे हुरिया गोबिंद मिलन की ये तेरी वरिया अबर काज तिर किते न काम मिलसा संगत पद केवल नाम सर अंजाम लाग अब जल तरन कहे जन्म बिरथा जात रंग माया कहे रहा जब दब संजम धर्म न कमाया सेवा साधन जाने हार राया कौ नानक हम नीच कर्म माए शन पड़े की रखो शर्मा पातशाह ही दसवे कभी हम बात बेनती जाओ भाई हमरी करो हादर छा पूर्ण होए चित की इच्छा तब चरणन मन रहे हमारा अपना जान करो प्रतपारा हमरे दोस्त सवै तुम काबो आप दय मोय बिचाव सुखी बसै मोरो परिवारा सेव किसे किस बै करतारा मोर अच्छा।